ni sama tripurani tanu vidita sakala sansar kaushik suno banda e bal kutila kala vasani jakula gal tum hat kahu jo chaho ubara kahi tap bal rosh hamara sur samad karani karahi kahi na janab hi aap nityaman ran paaye kaya na karahi pralap राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बर नाम तुम्हारा कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परसु